हे इमा भारत मालेम द अथोई भी हिमालय चिंजाऊ ना इमागे लुहु ओइनले तिंग भी पाकलब सागर ना इमा नंगी खोंया थम्बाल बु शिंगली भी तुरेल कया ना इमा नंगी मिंगलिन बु शोंजरी थौना फव नचा कया गी साउथोक चना फमनी इमा नंगी।

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक ngasi चेनेल असिद थमजरीब थौरम परेंग मयामदा निंगसिंगजरी सथजरीब थौरम परेंग असिगी पुंगतरु मिनिट तरा थमजरी सीदे हिदा पुंगतरु मिनिट तरा मंगा तोंगान तोंगानबा सैसकपसिंग नसकपा इमालेबाक निंगबे इशै मथंग मथंग ओइना तोंगान तोंगानबा मतम इशैसिंग कुदोल तमजेगनी पुंगतरु मिनिट कुमंगा पुंगतरुक मिनिट निफु संदोक जगनी रेडियो क्लास चमरीग निफुमाथोई शुब तांकक ngasigi tangkakta class 6 ki english subject ki lesson number 3 lachit barbukan tanjagani thorom asi department of education is samagra shiksha manipur ki makhada putokshab thorom ni ayuk pung tare delhi dagi rileda भारत की इकाई खुमन जरीब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ना न्यू दिल्ली की ऐतिहासिक लाल किला निंगतम नुमित का मरी लेना भारत की मचू अहम की फिराल चिंखटा जाति पीब पाउजल संदोकना तहजगनी रेडियो लीला इंथोप ताब फंगी पुंग तरामाथो लीला इब सेंचम कुमार सिंह लीला पुथोप अधिकारी मयूम की चंद्र शर्मा पुथोपद तेंबांग अथोपम सुभाष चंद्र सिंह नुमितब पुंग तरह मिनट तरह संदोकजगनी गुड आफ्टरनून लेडीज लाइव फोनिम प्रोग्राम की थौरम गीत मला की थौरम फंगी पुंग मिनट तरह तोान तोब अरीब मनपुरी फिल्म इसई तहजगनी पुंग मिनट निफु पुंगाई लाथोजगनी वेस्टर्न म्यूजिक की थौरम तोान तोब सैसकपिंगम इसई मथंग मथंग लाथोजगनी पुंग अहम मिनट मंग पुंग अहम मिनट कुंथ्रा मंग संदोकजगनी रेडियो क्लास चमरीग निफुनीथ सूब तंकक तंकक क्लास सिक्स की इंग्लिश सब्जेक्ट की लेसन नंबर एट क्रिसमस विद अ डिफरेंस तहजगनी थौरम से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इस समग्र शिक्षा मणिपुर की मखाद पुथोब थौरमनी पुंसी खोंबुरोगी लाथोजगनी पुंग मरी मिनट मंग थौरम निंथौजम निथेबी लोनबी निथौजम ओंबी थबा लेम उन्न वारी साब उन्नगदी मेरीना ओनाम थौरम पुथोपी थोचम रेनुवला पुंग मंग मिनट अनी संदोकजगनी गायखो ताकीसी थौरम लाथोपीगदब रोजेंद्रो पुंग मंग मखाई सुमांग लीला लाथोजगनी पानथोबी सायोन लीला सानबीगदब एन अंगौटोन की कांगो नहारोल की खोजल संदोकजगनी पुंग तरुक मिनट तरह थौरम फैशन स्टाइलिस मार्शेलो यंगम उन्नबी थौरम थौरम लाथोपीगदब गौरी हावम पुंग तरुक मिनट निफु तहजगनी कुंगंग थौरम थौरम की अहानबद लिंगमापम बाबू सिंह सकप खोंजोम पर्व थौरम की अरोबद तहजगनी नों की इसिंग योक्षिनब हाइबसिद डॉक्टर कांगजम सोनामणि सिंह सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट सोयल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग केबीके चांदेलग

आकाशवाणी इम्फाल हाउसिंग अमूलान थोक्चरी तोंगान तोंगानबा सेसकप सिंग नसकपा मतामिशे सिंग मथंग मथंग ओइना खुदोल गे हानबदा लानथोक्चरी लाइश्रम बीरेंद्र कुमार नसकपा बीजेंद्र कुमार शर्मा ना सैरिंगबा मतामिशे इमा इसे खुदोल तमजरी तामिनासी

आकाशवाणी इम्फाल हौजे पुंफम सिद संदोकचेरी रेडियो क्लास चमरी निफुमाथुई शुब तंक तंकद क्लास सिक्स की इंग्लिश सब्जेक्ट की लेसन नंबर थ्री लसिट बरपुखन थौरम से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंबांग मखाद पुथोक्षब थौरमनी।

0: Taviri. Nongmang tem pahari ki khonjal da maibam ramcharan na sering ba matamishema. Akashwani Imphal, Halzik Delhi dagi relay da Bharat ki kai khumnazari ba Pradhan Mantri Sri Narendra Modi na New Delhi ki itihasik oraba Lal Kila da ningtam numit kamari lainana Bharat ki mashu ahum gi firal chingkhat ba amadi ngasi jati da piba paujel tanjari
1: ye Akashwani Delhi hai kripya hamare agle prasaran ki प्रतीक्षा कीजिए ये आकाशवाणी है अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे विवरण दे रहे हैं श्री जयनेंद्र सिंह सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी
2: हॉलमार्क का निशान देख कर ही आभूषण ले क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने ISI मार्क देखकर ही खरीदें क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 14555
5: आयुष्मान भारत अब इलाज की चिंता से आजादी

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आइए लाल किला चले।
3: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्रनायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्रनायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
4: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी

0: भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन
1: यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं, तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन यह है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है, जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है, उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहाँ से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है, तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई रहे हैं। यहां से
2: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहां लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है, क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहाँ तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहाँ पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है, लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश

0: में भारत का उदय हुआ था, वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहाँ सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गौरव से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है, जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल DCP विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिने हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहाँ के कणकण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहाँ लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो NCC से संबंधित रखते हैं, NCC के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे माय भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफ़ेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है, ज़्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है, और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहाँ रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आज़ाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, NCC कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एकटक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज है अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहां आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहां पर सामान्य जन हैं, NCC कैडेट्स हैं, माय भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो 3 प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में

0: हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात यह है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र शोबोर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित है।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों। और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री

0: राजनाथ सिंह श्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।
1: अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद

संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कारपेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे

0: कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक, और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए। और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक

0: गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला, मैं गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी
1: निश्चित रूप से, और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण की वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट के को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलग जगाया करते थे। यहां चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
0: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें

ये अवसर देता है, क्योंकि हम जानते हैं तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है इस समय।

0: द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
1: राष्ट्रीय ध्वज।

0: और इस समय आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे हैं, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये मी 17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अठखेलियां करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाईं तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहां ठीक सामने, उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है, पंखुड़ियां है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है
1: जी। और जनेंद्र, किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये
0: जी। और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजे, लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को

बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है।

अरे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य
पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया, बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है। और इसलिए हमें

चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था। आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले

देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा।

सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा।

और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्र तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे स्वीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसे मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए।

डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेनर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस पर तेजी करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा।

हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है, तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आयोग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदाएं हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी

दुनिया के अंदर सिरमौर हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है। और देश के नौजवानों ने नौजवानों को नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं। और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। और

रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे, बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार नौ दस का कालखंड था सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है, और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1,000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राजगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन।

इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारे पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस विषाद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी

नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6

करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीति के अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता आग्रह करता आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। और इसलिए हर घर में वातावरण बने, इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे

को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराएं, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाएं, संकल्प को सामर्थ्य बनाएं और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं, कदम से कदम मिलाएं, मन से मन मिलाएं, लक्ष्य से जुड़े रहें। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाएं। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उठते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शाम से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है, जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी, यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
2: और माननीय
1: प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
2: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम के समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो सात अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है और जो सात बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का ये एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहाँ पर दिखा रहे हैं तो वो दृश्य हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
1: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हो, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूँ, राष्ट्र हित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवान हूँ, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
2: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाईं तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से

0: इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं, और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई संगठनों आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, शासन भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है, क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर, और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, GST हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामय मंच है, यहां से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
0: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि के राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं, और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार कर

0: अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहाँ उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहाँ से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
1: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्ति धरध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।

आकाशवाणी इम्फाल अदम थरम ताविरी बसी मेगा हर्ट सामग हम दशमिक मंगा संदोक चरीबा एफ एम शंघाई चैनल दगी हौसी लाथक चरी तोान तोान सैसक सिंह सकप लेबाकनिंग से मतंग मतंग खुदोल की हानद लौबी संगीत मला की सैसक कांगुन सकप लेबाकनिंग से इसे सैरेंब निकुंजा तो से खुदोल तमजरी ताविरसी।

आकाशवाणी इम्फाल हौजे अवांग नोंपोक लमदम अमदी मणिपुरी दा पाव मिकुप खरगी तुंगदा मथम मथम तावा फंगबिरगनी।

0: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯃꯦꯔꯤ ꯀꯦꯂꯦꯟ ꯀꯧꯏ. ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯋꯥꯡꯃ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯅꯤ. ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯕꯥꯔꯗꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ. ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯕꯥꯔꯗꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ.
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है.
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
0: आकाशवाणी इम्फाल हौसे मुता विरसी लेबांग निंग बेशे मथंग मथंग ओइना खुदोल गे हान बदा निंगोंबम मुनाल सिंह नसकपा एन हेरामनी नसैरेंगबा. 一些什么

आकाशवाणी इम्फाल एफ एम संगाई चैनल की सत्थसरीब थोरम परेंग असिदा अहोंग बखरा लेबना मरम ओयरगा पुंग तराम खाई सेयोल सिदा मणिपुर तांजगनी थोरम असे इमालेशेम इनातलोशंग पंथव इशाइकोलनुंग सेलोय लमाइचिंगी तेंबांग मखादा पुथोक्षब थोरमनी ngasi namidang pung nipal makai tongan tongan ba manipuri firm singdegi lokachaba firm sei mathang mathang oina lanthok chagani ahong ba asigidamak thauram tabiri ba singna pukchel chaungna ngakpi gani lebang ning bai shegi makha chatha jarak pada lanthok cheri moirang them ibohalna Sakpa Nilachandra na sairing ba isayema.

0: 아이고, 근데 내가 앙라이팅
1: 꺼리기노네 하이리시고
0: 이스쿨라파바다 타말락티 하이리바
1: 하이 마마 스쿤나 포지션 부토펑 암바 포트나테네 가디안 오자 사타 불업 마타우타이 아차우부 오피셜 닥터 인지니어 마얌세 고멘 스쿤기 사타가 악테니네 넘바 아파버 스쿨 카라이부코 부게 하이부도 얌날루이
0: 오 고멘 스쿨다 탐바기 짱냄 타럭 리바시나 타크바디네 स्कूल फा फत बगी चांगली अपन नथरोसीबो
1: मछा मछा न होन बगी मखा या न बोले मामा मपा न हिं तुम न दरे मछा गी होम असाइनमेंट होन बत
0: अदुबु पिगली बांगांग सिंग गी मराई बगसे मामा मपा द लई हाई बे वानी दा
1: होइने ऐ सु खंगी ने लाइक तम तो लो तो कदरी बा लबुक ते चछि चट कदरी चिंग ने सिंग चन ब चछि चट कदरी लंगफई चछी अदम चक्क देउरी मिने ममानंग बा
0: ओ तंबी बवात पना नि खंग दे हाइता बना नि खंग दे मैट्रिक पैखा हेक हाइदुला कान द ने नील हाइबे स्कूल याम यावीदा कमाई तोरी जानो खंग दे
1: ओजागी सिनफम बुदी चप मानवने अदुदा आइबुने हेन हाइ हायनिंग बगी वातने होय मछा बुदी याम खंग हाइजबा अदुबो ताकी तंबी बदी खरो वाट पछु याव द बनते
0: होइने
1: खोट पु होनर अब दिए इशानी है ये मकोक तो ठोंग ने लागे बच्ची ने मामा इंग्लिश न्यांग लगा लाइरी हाई वशक पे आप नते लोल हाई वशरी मफम नो दल लाइरू रब दी खंग बकुई बनते लूरी बदी लाइरी सिंग दो ममुट्टा ना खंग बदुनी ने
0: होए यंग सिन भी बवात पता की ताऊ बनी हाई बताए
1: ओजागी नमित सिनमी की नमित लाइरी बसिगुम ऑफिशियल की नमित हाई बा मन लाइक तबने ओजादी IAS इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट कया गे प्रोड्यूसर ने
0: अदु दी ईसा सिंह असि दी कम दउबा
1: करी नो ने मामा नन हाइरी सिबा हां लाइरी पा हायर ग पारीबा सानेसी ला ओ हायर ग सानेरीबा अदु गु मंगा ग दुनबो मिको थोंगबा इंटरनेशनल प्लेयर ओइ बा हाइ दु दी ओइ थोक तबनी पानिंग न पावा साननिंग न सान बदुनी ने मरु दी
0: होइ ने अदु बदी आइ सुने मामा गाइद बंकिम चंद्रगी दुर्गेश नंदिनी हाइब लाइरिक तो पाखीबदो हौजिं फाव हेग निंगसिंग लिसे
1: तो तो अदुने खानिंग लबदिने तुनिंग बका फाव बजा नतेने नंग बो
0: अदु मोइबा मोइबा गी ट्रांसफर हाइ दुबो करम तौ खगेबा सही तरा तरा माथोइ बुचिंग द छम थंबिरी सिबो कमाई तौ दुइनो
1: होय करम नदि तौगनी खंगबी गदवन खंगबी द्रबदा उबी गदवन उबी द्रबदा करीरि उपायले चुंग चटपगी लंबी लेती खोई न चटपगी दी लंबी की लंबी आगतनी ने है मामा
2: तमो क्या हम कोई रे आई कर थेंक रमा ले
3: गाय तो न तलाक लबा गाय तो न तले रे गदब मियो ई पोके पुलसी गाय बगी ओवा बकरी नो
2: फिलोसोफी दी वांगे को सिनफम ओनरे अदो अवाबगी पोलम पुबसे आहल थुन ओइसले हाइबनी को
3: अदुबु मफम दद पोकलर बनिना इथौ वइब ताबनि
2: पाम दबदुदि काइना बन फत्र
3: येन बने सरु ओइरब पुनसिद करम बलंबिनो खन गदोलि बसि बो
2: होतनाबा खांग बकनबा पुनसि खोंलोय ओइबना तुंगी पुनसिद अफाब ओइरोइद्र आइदि तामुबु तामोय सेंग ननुसि
3: नुसिबा नुसीबगी वाहन थो नुसीबा पोसक असे उबदी फंगे अदुबु मगुंदी याम न कल्ले
2: करीनो कहीं नुता मोना हारी सिबो
3: तंपा इशोन नंग आई थोंग बीरम लिबा नुसीबा से मसु ममेन गी हारो रबदी मनी मुक्ता आदगी हैं न फजरम कनी अदुबु मगुंदी क्या नहीं
2: हाई नी बसी न दे तामो अखोया नी की पंथुंसु क्या न बता रबर
3: खेतना बा पाम द्रबसु मफम मतम न ओहोंग बलाक पदा नुक्षी बसु ओहोंग बलाक पा कनान खंगनी
2: तामोगी वाफम सी आई आई चिंगना दा पंगम दे आई बो तामो न थादो पी खल ब्रा
3: नते वाफम मदो मक्ति तायो नगनी
2: अतु दे तामो न हाई सी नते आई न तामो थादो लंगनी हाई बतारे
3: होय मधुदा करी सिंग न बले
2: ओ फरे अदुदे तामोना आइगीदमक कदाई फाव बकथोप गंगने अमुक ता सिंग हाइबि
3: तंफालिमा आइगी नुसिबदी मखल यामी मी यमगी पुनसिबु नुंगाय फनबगीदमक होनबिरबदी मधुसु नुसिबनत्र
2: नुसिबा

0: इसाने इमा मु इमा आईना भूख तक कऊ कई दो बगे इमा गे बे मा
1: ऐसे नंगे लमे बिना चा संभाला ही मने
0: इमा
1: संभाला
0: गे
1: ही मा
0: तंपा
1: इमा गे माई तो है ओ मदा नचा गे बिलो पिरांग से इमा द उठ लरोई कन की बने तादु मु थिंगम द्रव मिलो पिरांग से थिंग बगी पागल ले रख रे इमा नचा बु अरो भी गनो नचा ना रोई बो होई ना इमा हाई ना अबुक तंग पे न कहोगे इमा
0: इमा की बेमा
2: अवाना कया खां कौजिकते ईशोर ये थोजान देगी अमदे होना वक्कन में देगी तोल तार व कया गिलम जिंग लम ताक पीवा अधुने मैते ही नुपी की थोना ऐ कोई न पोक से रवशो ऐ कोई न पंग थोक पंगम लरोई दबा गाते ने इशा की खुट्टा लेरी बसिंग से
1: बाबा लमे लमी न चाने हाय भी इन दबी ने लमे लमी दी अदमा वजह बतावने बाबा
2: बेमा कदा कदा है कौन थों गाम बदी इचा की दमकता तो फम थोक पक खुदे मक इपा पंग थोक लगे ने ऐ बेमा
1: वहाँ बगी पंदों लों बना माँ की पुंची बाबा न चाने माबू कर मंगा माँ उधरे
2: हाँ करिया है बा
0: करीनो करीनो हनंग नहाई रे बसिंग असीबो इमागी बेबा इसागी पुंसी असीबो इमान करम ये अंगलसिगे इमागी बेबा
1: आईगी वहाँ बगी पन कहीं लोए मसी दगी है ना वहाँ बा अमुक लाई ना रोए अमुक लाई ना रोए ये पुरोई बना हुंदुक पीरम लबी आईगी ने हाय बता कना लाई जद्रबी तोहन बता कि तो लबी ने आई दी
0: भाई बेमा
1: अदुना तो लतार बा कना लाई जद्रब सिंगी इरुप इपी जाओ इदुना ले माहुरी बा पुंसी मते के से असम ले जग्रसन होई माँ
0: सुमी जागी वाक थागले इमाना थागले इस आगी ने हाय बता मसक तो पक करेगो माँ मत इमान पंग तो पंगम की दे इस आने दे इमा बाबा मदे नबुंग बु नो बदों तंग ता थागली बा
1: नते नते इमा आई बु बोपी बा अवानुंगाई खनन भी बा इमा बाबा की लम्बा नचान सिंग मंगम लम्बे न चाहने इजा की बात चीथी ये दुगी लंबी ने घसी आई न चचरी बसे चट खब लंबी दा अमुक तुम हर नहीं येंगे खंड्रे अमुक तुम हर नहीं येंगे खंड्रे अब आप की पोलम पूतना अदु चचा करेगी
0: लम्बन करेगी लम्बनो करेगी लम्बनो नंग नामुक तुअन का दौड़ी बसी बो
2: मामा इचा तंफाले मा कनाना पिशक पिकलिंगे लगी मरिंग जन मथाउना ले बिने हाय की बुआंगा न चट्टे इमुंग मनुंग यवाना कया द थाउना ले इन थेने की भी तंफाने अंगलव नत्रने नंग
0: मुई बा
2: यार रोई नंग न पना हाय द रस ऐ कोई न पोक जो ऐ चावो ऐ रबस हो जाते मियांगी मामा ओए कबीने पुंछी मचेल ओए रबस लंबी तोगान कब तंपाने ऐ कोई न माव इन तोपा मानस ओए कोई इन तोपा ताबनी ने मामा
3: बाबू इमा तोड़ से कंगन इचल तंपाले मगी लोग क्रिप फिरे तमोई की इवल ओम बलेर माना माना पाम दो तो फिर सुध
1: तचाओ नचन नलान की भैया और मसु नग पियो नचन न कौं पाय द नहाई जरी तचाओ
0: imagi be ma isabu imana aseng ba magtanang munung si ba oira ba di nang nataw jaro ba ko ding ma may pag po ayo ko imagi tapala ima
1: ima
4: madam jang jar kya gata
1: yane
4: Madam, Jiti Emma Postman Piram Bani, Saudi Arabia, the Gi, Tengra, Kobaman,
1: Tengra. Karakada,
4: I see the legend.
1: Sit up, Iku Bungi Mapanani. I never sing him Jeribus. Pope Babudi, Yok Bibanamaru.
2: Kuri, Tengra, Haiba.

0: हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज, के थोरमनी है बी यू का नाव बिरबनो।
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: हाँ, गुड आफ्टरनून। यहाँ के खोंजल से फजन ताबी ब्रो कमाई तो बी के फजन
1: ताई मैडम।
0: ताए बको। होय होय, है बी यू का नाव बिरबनो। मिंग लेफ मंगतंग हाने खंजगे। वो रेडियो से नाकन दले रहेगा दिखा जी तंग लाभ थोक पिरक ना बहाई जरी को मसे हंजन हंजन हाय हाय दुना सो वारो बिगन को। वो इको से खर चले दुना ताजे बदे सुनुंग आई जता बहाई जब को नसी ये अम नुंग आई है बिरी सिबो का नाव बिरो बनो मिंगले फंग अंग तंग हाने खंग जगे। हेलो।
1: मैडम आई ना
0: हाँ,
1: खेरिंग में ई बको
0: वो इसे रिंग
1: अंदर
0: सुतामी ने से
1: ना
0: दो मिंगले फंग अंग तंग हाने खंग जगे।
1: अंदर फोन जे
0: ऐहाँग ना हाई
1: हम
0: बी
1: लगा थाम
0: ऐहाँग ना
1: जावा
0: हाई
1: है
0: जरी सिबो ताबी द्रबो।
1: क्या बोलते था।
0: आ सेरिंग सु ताजगे अदो इसागी मिंगले फम अमुतंग हाने खंजगे हाई जरी को।
1: हाई जे के मैडम कहने ने मुझे पहले मेरा कहते कि सरकार में सारा थी ने
0: इरम सिफाई में आई लिखाई
1: कंजेंस जाम
0: देगी।
1: फंसा ये मैं नांगी कंजेंस है
0: थगे चली। आ इरम सिफाई में आई लिखाई देगी सुरेखा बम करी हबीब
1: सनाथ
0: सनाथोई सनाथोई बोई खोगी थरो मसीदा तराम नोक चरी को याम नुंगाई जे ngasi sana thoi ga thengna ba phangja ba ehak su yamna harau je haijari ba ado sana thoi ngasi kari kari mathel ga di hona bi rage
1: ऐसे ही मतियान हम जाए
0: nga kari kari mathel ora ban
1: अमना हवाई कंचन थोंगे अंदर को अमना तोरो बोचा पुतले तो का कांगों नो
0: हो हाउ बंगा द नि को ado cha bu loi mak loi bi khra bo
1: ट्रस्ट ए ngasa de i ए तो ऐसे साइ ngata de i हम थाई बको थाई बलो ना दिला सुलो इता ओए ओए फजे बा तो का इन को भी सिंग साइ बा ए तो ऐसे हिंगों तो थम्मा का अदुगा सैरिंग दुदी आइना ngasa ए ई बने बा अदुगा नहान दुई जैना आइगु वखन दुम बगर सैरिंग से दुम पागे न खन बा अदुगा दुम इथोखले बा आइना
0: होय होय
1: डेली द सेटिंग्स दी मैडम
0: सेटिंग्स से कहीं नुमित इवो ही दुई नो
1: वाकन ना दुम नसाई तुम हम खाता है उधर माल नो आलम दागी हम खाता है उधर माल
0: याम गन ननी को इशान सेटिंग बिरे में बसे हाँ ना देगी हैव दिस स्कूल गुम्बद कॉलेज गुम्बद सेटिंग का थी बिरक प्रो इशान सिबो। हेलो
1: हेलो
0: ताज़े ये है बियो हैव दी इशान से स्कूल गुम्बद कॉलेज गुम्बद सेटिंग गुम्बद थी बिरक प्रवा
1: हाँ ना दिखी हुई तो फर्स्ट टाइम आई था रे तो ना जो का आई था ये दो सम थे टेनिंग ऑफ आई था रे ना दा
0: होय होय अदो ngasi tibi ga dori ba sairong sairing sina kari da yum pham oi bo oi ga dori ba no sairing se
1: sumba wai wa ta ng ta ni da phaja ba ngak ta hai ta re khara du tien di tele yam sang di oi de adu tigi sairing se अचुम्बा वायन जो है मैडम
0: ओ अचुम्बा वायल को
1: दोगा सी जे कोई की आई ना हो जी फोन तो जरे से मैडम आई की साइट की वो इन्होंने दी कॉलर आते ही कोई खंगा बना तभी तो ना इस टाइम से नहीं बुकती तुम तारा मनी तो आई जी फोन दी हफ्ता हम हेल कर दो तुम तो ये मरम दी नहीं मैं आम से तुम फंक्शन और खान बाद होगा कई बुलम जाओ बगी कोई मासिंग खर ले ये बाइक खंगा भाई डाले ikoi nak napan tau kumsi ni ki awa uraga nongna kumsi ni ki awa tu mating angsi ni sa ki ipak ta tiga ngarakanu ni tiel oina su hingana thongna leina ngo ni ga jenga ba thangganu akaba ni ki matau tau khatta gi lambi di akyan balambi akaba gi lambi di asang lambi ni ni lai ba tang chi he gi thamoi thong aba khak taru nu aina ma hele alu nu ai gi su awata amal lai gani. Thank you, miss.
0: Yam na phase ko som na yam tin ta na thabi pada yam na machang oi ba wa hei ngak ta na ko ai na ma hele khan ganu ai gi so awat pa ma leram gani hai na wa from solution bi bane ba sai ring se asukki mati hai ba di yam na tin ba mata ma si da yam na phaja ba yam na machang oi ba sai ring ama akashwani infal gi ma from da ma yam pun na tami na ba ya ba ma thambiram ba gi da magta pa thok piram ba gi da magta som bu han na han na thak chari
1: Thank you.
0: Thank you. Thank you.

शुक्रिया ट्यूरिस। नमस्कार दोस्तों, ये है आकाशवाणी फाल केंद्र का FM संगाई चैनल 103.5 MHz पर और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त थोकचोम गीता।

दोस्तों आज है 15 अगस्त 2026, हमारे देश की आज़ादी का 80 साल। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सुनते हैं आज का देशभक्ति गीत। तो कार्यक्रम के पहले पायदान पर सुनते हैं ये देशभक्ति गीत जिसके लिए दिल गर्व से चौरा हो जाता है। इस गीत को खुद A.R. रहमान ने संगीतबद्ध किया है और अपनी जादुई आवाज में गाया है। इसके बोल महबूब द्वारा लिखे गए हैं। सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, सुनकर लगा कि हम सच में विजयी भव है और इसी विजय के जज्बे के साथ अब हम सुनेंगे अगला देशभक्ति गीत फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का। ये देशभक्ति और जोश से भरा गीत है। इस गाने को शंकर महादेवन देवन ने अपनी दमदार आवाज़ से सजाया है। संगीत शंकर एहसान लॉय ने दिया है और बोल प्रसन्न जोशी ने लिखे हैं।

दोस्तों अब सुनते हैं फिल्म कर्मा का प्रसिद्ध देशभक्ति गीत। इसे मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। शब्द रचना दी है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: दोस्तों अब सुनते हैं देश प्रेमी फिल्म के ये टाइटल ट्रैक देशभक्ति गीत। इस शानदार गीत को महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी है, बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत दी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: नफरत की

दोस्तों, इसी के साथ आज का एक ही रूप में देशभक्ति गीत पर आधारित कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सभी को एक बार फिर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

खुदरदमजरी भई से इसी खोयम चैठेंग फिल्म स्टेकी निकोलस अशाजिद सत्यम ये अपन बखोंजल द मेगा हिरम चाना सैरिंग बमदी बिसोना सैरंग भी सैनी

0: आई पुतलों खोंबा
1: लाइनिंग थो
0: अंगसी रिपु करगमुआ महंगे
1: करम बसना तुम तापी गदबा
0: आहंदा रिपु पुरेम बना आंखलम पाकी संजय मुंगदगी खोयम लाइनी ताइबंग मिनी खंग दबनु पी म फारे हाय न ताए हायरि बवासी पुता रबरा
1: लाइनिंग थो ननाई पुसु तापी रि बसना था तुम न ताजे लाइनिंग थो
0: अदो रब दीपु हौजी माई की कोंग पुखलो हायरि सोइपु
1: फगनी ननाई पु पोथम चंजे लाइनिंग थो
0: कौखलो
1: पु हा हा हाय बनो पुरेम बा मरां थंजिंग चिंगी चिंगों नागी के लंबा तभी फारे आया बा खुलम लाई नी तबल नी ने बस खंड दिया बोल के लंबा मारे हब तो नहीं थे भी वो लजिंग कुछ ले है बना चनामी हम तो तागे ये कंगला उचा समंद पुखलो पुखलो
0: आतारम मदरे नहीं पु
1: तारम मरी मना ने पफान चिंगे लाइन थो
2: इताओ मां था भी हो चे मां था भी
3: हो इंदिरो कर इंदिरो इताओ इफाजे के इताओ
2: पूरा जैसे लुको
1: लाइन थो आ पुरी वताम बता पूरी मुगी मत तुम इली पे आसी वर मारे गला भारी
0: आगे आदि की सिरे नहीं पो
1: सना में ताबी ने बनाया
0: पो सिंगल उदी है ना उखरे तो कोई पो
1: आ सी और अबे सना में ताबी ने बनाया पो कुंजर रखे
0: कक्षलो इपो कक्षलो
1: इबलो पूरी अंबा
4: इपो तलंग खंबा
1: कदाई इन्होंने अगर आने संसे में और बदे फारे हुआ बा कोयम लाई नी तबंग मुझे बस खंड दिया बा वो एक लंदांग माले हब दी बुलोगे तुम भी इन्हें बदुरा
4: माने इपु
1: सेंगलो दी हेली है ला ला ला पुसलो पुसलो लाइन थोड़ी बुलो लाइजिंग को तेरे है बना नहा पुक्से वरी बनने सना मिले हम तो तागे ये बुलो खुरम मग कलू
4: लाइनिंग थोड़ी बुलो नराई ना पुना सना खुया खाद खुरम जरी लाइनिंग थो
0: आई पु पुरेम बा हंदा इपु ना नांग खलम पाकी संजय बुंदगी खोयम लाइनी ताइबंग मिनी खंग दबन उपी मा फारे हाई बदो सिरे इपु
4: माने लाइनिंग थो
0: आदु दी इपु नसु मुक्ति इंजेगे इपु तलों खोंबा
1: लाइनिंग थो
0: उपी इसे मुक्ति इंग सिदे
1: नो मगनी सना मियं ताबी भी आगनी लेख पीउ नराई थोगल इंजेगे सना मियं ताबी
0: मांग थाबी इपु मांग थाबी
1: लाइनिंग थो
0: इपु
1: करी नो ताइबंग मी मेर तब खोयम लाइनी योर एशिबु करम बलाई की सायो नो सरु वेरा हेलो वेरा मी खरो बलाई खरो बा इसिं मीरे तम मीरे सिं मीरा लाइन तो सना में ताबी हो सरू ही हेलो बदू है बदी है सरू हेलो बन लाई सिल लाई मांग ली सहयोग में मुए
0: इप्पो
1: करें बन लाई असीम में ताबी ना कदम बन लाई ना लाइन तो
0: इप्पो
1: को पड़ी मेरा पुरुष चंचल बोलूं को बुआ थोड़े अंत में आए खोरे बो ऐसे बांधु बस सना में ताबी है तुझे लगी रहा सना में ताबी ना लाइन तो करें बन लाई सहयोग नो लाइन तो ए नाना ऐसे लाइन तो अपान थोपी होता है लाइन तो
0: इप्पो
1: माने अपान थोप अपान मुंशी तो खुंदा रे बन लाई अपान थोपी को लाइन तो
0: इप्पो
1: मसाज अपक कुरान चल असल में बुंसा मसाज ईरान ईसाई रगा खुजी खा के मुंह तो तब्यूल हरू पाल गया तब्यूल पाल बजा मपारी मम थनम बजा मधु किसे ने

जंत्र संगीत की खुदोल दत्तावीरे लाइमयुम राधाचरण शर्मना खोम गिटर अदम नताबीर बासाकस बनी फालगे एफएम संगाई चैनल ने हौजिक संगाई चैनल गिंग असिनु मिदांग अमदि हयिंग गि थमजरी बथौरम सिंह समलप ननिंग सिंह जरी हौजिंग हकी मतुम अदमना ताव फंग बिगनी नारोल गि खोंजिल पुंगतरुक बिने तारा नुमिदांग पुंग तरुंग बिने निफु खुंगंगी थौरम संदुक्षगनी थौरम परेंगी अहानबदा लिग्माबम बाबू सिंह सकपा खुंजों परबा अमदि अरुइबदा ताव फंगबिगनी नोंगी सिंह योक्सन बा हाइवे हिरम सिदा डॉक्टर कांगजम सोनामणि सिंह सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग केवीके चंदिलगा इखोगी मिहुट इरेंगबम अजित कुमार मैतेगा उनदुना वारीगोताई साबा थौरम पुथोकपा नोंथोंबम रमा

0: नहारोल की खुंजल ताबीरे ताबीरी वसाकसबानी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल नी हाउसिंग मखाता बतौरम सिंह कंगला चैनल दगी ताबीरसी
1: कोंगंगी थौरम

मखल मथिल की तोान तोान थौरम से आकाशवाणी इम्फाल के एफ एम संगाई चैनल हौजी लांधो सरी परिंग नाइने संदोक सरी रेडियो सीरियल प्ले सूम लिब्रा खोंथान से अहम सूब तक लीला इब खुंदों बम जोईमती लीला पुथोप माइबम इसाकांता पुथोप तेंबांग सिंह अथोपम सुभाष चंद्र सिंह असेम मंगलेंब म्यूजिक जनम्बम रिंगो मैते हौजिक लेजरे परिंग नाइने संदोक सरीबा रेडियो सीरियल प्ले चुम लिब्रा खोंथांग से अहम सूब तांकक

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

अश्क ये रात जाहिर है बाकी रातों जैसी नहीं होती। दिन भर तिरंगे की शान, राष्ट्रगान की गूंज, बच्चों की मुस्कान और देशभक्ति के गीतों से सजा वातावरण अब धीरे धीरे शांत हो रहा है माना, लेकिन आजादी का एहसास वो अभी भी हवा में घुला हुआ है। कहते हैं रात जितनी शांत होती है मन उतनी ही गहराई से सोचता है, और आज की रात उन अनगिनत वीरों को याद करने की रात भी है जिनकी बदौलत हम खुली हवा में सांस लेते हैं, अपने सपनों को खुलकर जीते हैं और अपनी बात बेझिझक कह पाते हैं। कुछ दीप शहीदों के नाम जलाए रखना, कुछ गीत वतन के भी गुनगुनाए रखना, आजादी यूं ही नहीं मिलती दोस्तों, इस एहसास को हमेशा दिल में बसाए रखना। मैं हूं नूपुर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हर सिंगार। अगले आधे घंटे तक हम सुनेंगे कुछ ऐसे गीत जिनमें देश की मिट्टी की महक है, इंसानियत का संदेश है और है मिठास दिलों को जोड़ने वाली। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में फिल्म लीडर का यह गीत पहुंच रहा है आप तक।

0: निशान देख कर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

15 अगस्त की रात, अब जबकि शहर की रोशनियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तब भी तिरंगा जो है ना वो उतनी ही शान से लहरा रहा होता है जैसे याद दिला रहा हो कि आजादी सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, हर दिन निभाई जाने वाली जिम्मेदारी भी है। आजादी सिर्फ सीमाओं की रक्षा का नाम नहीं, आजादी उस विश्वास का नाम भी है जहां हर भाषा का सम्मान हो, हर धर्म की खुशबू हो और हर दिल में भारत बसता हो। हम अलग अलग सुर हैं लेकिन मिलकर एक खूबसूरत धुन बनाते हैं जिसका नाम है भारत। फिल्म मतलबी दुनिया से गीत पहुंच रहा है आप तक, जय जय भारत देश कहता हुआ, आवाजें तलत महमूद, अमीर बाई कर्नाटकी और साथियों की।

0: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान न करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: माना आज का दिन देश प्रेम का दिन है, लेकिन देश प्रेम क्या सिर्फ तिरंगे में नजर आता है? नहीं, वो तब भी दिखता है जब कोई अपना काम पूरी ईमानदारी से पूरा करता है, और तब भी जब कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद को हाथ बढ़ाता है, एक नन्हा सा पौधा लगाता है ताकि वो बड़ा होकर पेड़ बन जाए, और तब भी जब हम अपने देश की अच्छाइयों पर गर्व करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। आज का भारत नई सोच का भारत है, स्टार्टअप्स का भारत है, चांद तक पहुंचने वाला भारत है, दुनिया को डिजिटल रास्ता दिखाने वाला भारत है। लेकिन इस नए भारत की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो उसी आजादी में है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने साहस से सींचा था।

भारतीय सिनेमा में ना देशभक्ति के गीतों की एक लंबी परंपरा रही है। कुछ गीत हमें जोश से भर देते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना, और कुछ ऐसे भी गीत होते हैं जो आंखें नम कर देते हैं, जो अभी आप सुनने वाले हैं, और कुछ गीत बस चुपचाप दिल में उतर जाते हैं। मगर अच्छे गीतों की यही खूबी है कि वो हमें जोड़े रखते हैं। फिलहाल आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल से, जिसे आप सुन रहे हैं।

15 अगस्त की रात अब विदा लेने को है, मानो कह रही हो तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उम्मीद है इन गीतों ने आपके मन में अपने देश के लिए प्रेम और गर्व का एक दीप जरूर जलाया होगा। देश सिर्फ सरहदों से नहीं दिलों से भी बनता है जब हर नागरिक अपने हिस्से की रोशनी जलाता है, तभी भारत और भी जगमगाता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का सपना देखें जहां सम्मान हो, संवेदनाएं हो और हर दिल में तिरंगे के लिए वही प्रेम हो जो आज की रात इस हवा में महसूस किया जा रहा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में

0: 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अभी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शिशिर सिन्हा जी, शिशिर जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: वार्म वेलकम शिशिर।
2: थैंक यू, नमस्कार।
0: और श्रोताओं, आप कॉल करने के लिए हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 2331-4-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106 और इन नंबर से पहले आप 011 लगाना ना भूलें। और फिलहाल मुख्य समाचार।
1: Prime Minister Narendra Modi unveils 7-point reform framework or Saptdhara for India's development, highlights manufacturing, agriculture, technology, green and blue economy as key aspects among others. Domestic equity benchmarks decline over 0.5% this week after 2 consecutive weekly gains. And oil prices rise over 4% this week on renewed supply risks.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास को गति देने के लिए सप्तधारा का खाका पेश किया। इसमें विनिर्माण, कृषि, प्रौद्योगिकी, हरित और नीली अर्थव्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। लगातार 2 सप्ताह की बढ़त के बाद इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज और आपूर्ति को लेकर नए जोखिमों के बीच इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की तेजी आई।
1: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first headline story. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Upon his arrival, for the first time, the national song Vande Mataram was rendered at the Red Fort. Thereafter, the Prime Minister hoisted the national flag, following which national anthem was sung. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called as Saptdhara. The first stream outlined by the Prime Minister is manufacturing. He said, The second power of this Saptdhara is agriculture and food production. The third is technology and innovation. And the fourth is Gati Shakti. The fifth, defense capabilities. The sixth power is the green economy and blue economy. And the seventh stream of Saptdhara is India's soft power.
3: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की 5 सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन 4 गुना बढ़ चुका है, खादी तथा ग्रामीण औद्योगिक उत्पादन करीब 5 गुना हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सफलता 7 गुना तक है। उन्होंने कहा कि देश में आधुनिक रेलवे कोच तैयार करने की क्षमता 21 गुना बढ़ चुकी है और देश मोबाइल विनिर्माण 33 गुना बढ़ा चुका है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या पहले के मुकाबले 4 गुना हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अब तक डिजिटल लेन देन 100 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से अब तक भारत करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। उन्होंने कहा कि इस पहल से रोजगार के अवसर बढ़े हैं और भारतीय कारोबारियों के लिए निर्यात करने में काफी आसानी हुई है। श्री मोदी ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय उत्पादों की पहुंच

0: पूरे विश्व में हो.
1: जशन, इन द मीन टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड एंड गेव द क्लैरिन कॉल फॉर इंडियाज एस्पिरेशंस दैट इज एज इट मूव्स फॉरवर्ड टू विकसित भारत 2047. व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग from PM's speech on this clarion call?
2: Apart from the seven strength, what we call as the Shaptadhara ki shaktiyan, he also talked about seven key, what we call as the aspiration, or rather I would say that changing the scale of the ambition or the aspiration. What are those? Number one is the 50 companies in the Fortune 500. So at this moment, we have nine Indian companies. Out of nine Indian companies, five are the PSUs and four are from the private sector. They are part of the Fortune 500. Now he wants that number to be increased to 50. The second thing he talked about, then an Indian bank in top global banks. So one of the big problem we always have been talking about, that we are such a big country, we have so many banks, but when we talk about the global banks, none of our bank are featuring in the top 5 or top 10 banks. The third, he talked about an Indian pharma company among the world's top 5. And this is critical, especially when we have become what we call as the pharma hub for the world, or pharma to the world. The fourth one is that Indian law or rating agency achieving global leadership. Fifth one is an Indian consulting or accounting firm among the world top firms. If you can remember, last year we were talking about Desi firms taking over the top four, big four, what we call as, how they can be groomed into that. So now he is also talking about that. And finally, he talked about that an Indian technology company among the world's top companies. Of course, our technology companies are in what you call, say, 100, 1 to 20 or 1 to 30, but he wants much higher ranking for them. And the final one is that the brand that world recognizes with enthusiasm, where it hears the name India, that is Make in India, Made for the World. So these are the seven, apart from the strength, which is he called as the Saptadhara ki Shaktiyan. These are the seven aspirational achievement or the target which you want to achieve that.
0: Manish हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर. मनीष, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए आपका.
3: हेलो
0: मनीष, प्रश्न पूछिए आपका.
3: जी, मेरा प्रश्न ये है, अगर कोई 20 लाख कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है और डेढ़ साल के बाद उसको अगर 1,20,000 का फायदा होता है, तो वो कैपिटल गेन में क्या रखना पड़ता है, या सिर्फ ये जो प्रॉफिट का जो पोर्शन है 1,50,000 उसको रखना पड़ता है, कौन सा है?
2: देखिए, आप जब घर खरीदते हैं और घर बेचते हैं, उसके बाद आपका जो मुनाफा होता है उसको इनकम टैक्स की धारा 54E के तहत, 54C के तहत उसकी गणना की जाती है, और उसमें आपको ये सहूलियत दी जाती है कि 3 वर्षों के भीतर उसको आप नए घर के निर्माण में जो है वो कर सकें. इन 3 वर्षों के दौरान आपको वो एक विशेष खाता होता है विभिन्न सरकारी बैंक और निजी बैंकों में, वो उपलब्ध है, जिसको हम लोग कैपिटल गेन अकाउंट कहते हैं, वहाँ पर आप रख सकते हैं. और उस 3 वर्ष के भीतर आपको निवेश करना होता है, कंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर बना बनाए घर की बात करें. और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि ना केवल घर, बल्कि अगर सोने से भी आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, या फिर अगर आपको शेयर बेचने का भी फ़ायदा हुआ, अगर आप उसको घर में निवेश करते हैं तो आपको कैपिटल गेन से छूट मिल सकता है.
0: शिशिर, आज प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का आह्वान किया है, उनके लिए ये भी कहा कि आप प्रयास कीजिए, आपको विदेश में मौके मिलेंगे बहुत ज़्यादा आपको निर्यात करने के, और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के जो उत्पाद हैं वो पूरे विश्व में पहुँचे.
2: निश्चित तौर पर, देखिए इस समय में अगर हम अपने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों की बात करें, जिनकी अगर पूरी अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी अगर आप देखें तो 40% से ज़्यादा का है, निर्यात में उनकी हिस्सेदारी ठीक ठाक है. अब दिक्कत यह है कि ये इनके लिए विश्व बाजार में अपने आप को पैठ बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के बाद आप क्या करते हो, तो एक उनके लिए क्या कहते हैं कि उनको एक प्रोत्साहित करने की कोशिश है कि आप अच्छा कर रहे हो. आप देखिए कि बीते कुछ समय में, चाहे वो आप मुद्रा योजना की बात कर लीजिए, चाहे आप पीएम स्वनिधि की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिससे कि सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है. अब उनके लिए है कि वैश्विक बाजार में आप और अपनी पहल मजबूत करें. आप अभी जो है केवल बड़ी कंपनियों के लिए आप एक कहते हैं ना कि उनको आप सप्लाई करते हो, लेकिन आप खुद विश्व बाजार में कैसे आप पैठ बढ़ा सकते हो, वो उसका आह्वान है. और यहां पर जो एक मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, जो उन्होंने कहा कि गुणवत्ता पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि विश्व के बाजार में, दुनिया के तमाम कंपनियों में जब आप सामान बेचते हैं,

0: वहां पे एक ही चीज जो सबसे ज्यादा देखी जाती है कि आपके गुणवत्ता क्या है और उसके साथ देखी जाती है कि आपकी प्रतिस्पर्धात्मक लागत क्या है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या है। और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस अगर आप कम करते हैं, गुणवत्ता अगर आप बेहतर बनाए रखते हैं, तो बाजार में पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज के संदेश का ये आशय था।
1: वी आर टेकिंग योर कॉल्स लाइव ऑन 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. Do give us a call, as Gopal has called us from Mumbai. A warm welcome, Gopal.
2: Namaskar, Mark Kamal team ko apne Azadi ke din ki shubhkamnaye. Sir, mera sawal ye hai ki koi equity agar girta hai to uska koi limit nahi rehta hai. मान लीजिए अभी मेरे पास, मैंने 1800 पे स्टॉक बाय किया है, आज वो स्टॉक गिर गिर के 500 तक लुढ़क गया है। अगर मैं टोटल अपना तीन साल पहले 10 लाख रुपए मार्केट में लगाया है, आज मैं अगर स्टॉक बेचता हूँ तो मेरे को 2 लाख भी हाथ में नहीं आ रहा है। स्टॉक जो गिरते हैं तो इसका कोई लिमिट नहीं है, गिरते ही जाते हैं। 1800 का बाय किया है, आज वो 500 पे चल रहा है।
0: गोपाल जी देखिए, रोज के आधार पर जिसको हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर, कि आप कितना नीचे जा सकते हैं और आप कितना ऊपर जा सकते हैं, वो रोजाना आधार पे है। अब ये नहीं है कि अगर आपने देखें कि जो आपने भाव का जिक्र किया कि 1800 का जो था वो 300 पे आ गया या 500 के आ गया, वो हो सकता है और भी नीचे जाए, बुरा नहीं मानिएगा, हो सकता है और भी नीचे जाए, ये बाजार की प्रकृति है। रोज के आधार पर रोकने की प्रवृत्ति जरूर होती है कि एक 5% के ऊपर पहला सर्किट है, फिर 10% है, 15% है, 20% पे फिर ट्रेडिंग रोक दी जाती है, वो सारी व्यवस्था की जाती है, लेकिन वो रोजाना के आधार पर है। उसमें लगातार अगर 10 दिन तक गिरावट ही होती जा रही है, जो कि कई ऐसे शेयरों में हमने देखा, हमारे शेयर बाजार में लगभग 7100 कंपनियां सूचीबद्ध हैं और इनमें से हम चर्चा अक्सर 30 शेयरों की तो करते हैं जो कि सेंसेक्स के हैं, या उन 50 शेयरों की करते हैं जो निफ्टी के हैं, लेकिन जो बाकी 6000 कंपनियां, उनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जिनको हम लोग 54 शेयर भी कहते हैं, पेनी स्टॉक्स कहते हैं, उनके भाव, किसी के भाव 20 रुपए थे जो घट करके 10 पैसे पे आ गए। तो ये एक बाजार की प्रकृति है, रोजाना के आधार पर जरूर ब्रेक लगाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसको कहां पे रोकना है ये बाजार तय नहीं करता।
3: जयपुर से जितेंद्र एक बार फिर हमारे साथ में। जितेंद्र जी, आपका प्रश्न पूछिए।
4: हाँ सर, ये जैसे पिछले 3 महीने से हम आईटी के निफ्टी 50 के आईटी में जो है ना एसआईटी कर रहे हैं, ठीक है, तो सारी तो कंपनी है, नाम तो ले नहीं सकते, तो एक दो में कर रहे हैं, और एक प्राइवेट बैंक है निफ्टी 50 में ही है जिसका दाम काफी गिरा है। अब क्या रीजन से गिरा, हम तो दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, 700 रुपया भाव है, 725 की, मैं उसमें भी एसआईपी कर रहा हूँ, तो क्या ठीक है?
0: देखिए, आईटी कंपनियों में मुझे लगता है कि जो बीच में एक माहौल बना था कि एआई की वजह से और खास तौर पे दक्षिण कोरिया और ताइवान में जिस तरीके की तेजी आई थी, उसके बाद आईटी कंपनियों में काफी गिरावट हमने देखी थी, अब वहां पर स्थिति सुधरती हुई दिख रही है। हाँ, रोजाना के आधार पर या अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो कभी कभी उनमें गिरावट भी आई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक मध्यम अवधि से लंबी अवधि का बना करके चलते हैं, यानी कि 3 से 5 साल का समय लेकर के चलते हैं, तो आईटी क्षेत्र काफी अच्छा मुझे अभी नजर आ रहा है। दूसरा जो आपका प्रश्न था बैंक को लेकर के, देखिए बैंकिंग में खासतौर पे एक कहते हैं ना कि जब महंगाई दर बढ़ रही है तो ब्याज दर बढ़ने का खतरा है, और ब्याज दर बढ़ेगा तो इससे जो है भले ही आम उपभोक्ता को जो है वो नुकसान हो, लेकिन बैंकों के लिए वो एक फायदे का सौदा हो सकता है। तो सितंबर अक्टूबर के बाद वो स्थिति शायद आए, तो उस बीच में बैंकों के बीच में हमने देखा कि सरकारी बैंकों की स्थिति अच्छी रही, निजी बैंकों में गिरावट आई है। जैसा कि आपने खुद कहा कि आपने एक सरकारी बैंक के शेयर ले रखे हैं, निजी बैंक के आपने शेयर ले रखे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको चिंता भी करने नहीं चाहिए, थोड़ा सा उनको समय दे दीजिए। और आपकी बहुत अच्छी रणनीति है कि आप उसमें एसआईपी कर रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे किस्तों में निवेश कर रहे हैं, और हमेशा हम अपने श्रोताओं को यही कहते रहे हैं कि मुनाफा भी किस्तों में कमाइए और निवेश भी किस्तों में कमाइए, एक साथ सब कुछ लगा देना या बेच देना उचित नहीं।
3: दिल्ली से कन्हैया लाल हमारे साथ है। कन्हैया लाल जी, प्रश्न पूछिए।
5: हेलो, नमस्कार।
3: नमस्कार, प्रश्न पूछिए
5: जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा गोल्ड परचेज करके रखा था, अभी बताइए कि इसका गोल्ड को अब सेल करने का कुछ हम सोच सकते हैं?
0: देखिए, सोने को लेकर के मुझे लगता है कि सोने को में पिछले दिनों काफ़ी गिरावट हमने देखी, जब 170-180 के भाव से नीचे गिरना शुरू हुआ, 140 तक आ गया, 145 तक आ गया, और सोने को लेकर के ये भी कहा जाता है कि अमेरिका में जिस तरीके की मजबूती आ रही है, उसके पास डॉलर में जैसे जैसे मजबूती आ रही है, सोना वैसे वैसे कमज़ोर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ समय के लिए आप रख सकते हैं, अगर आपकी मूल

0: अगर आपको घाटा नहीं हो रहा है तो कुछ समय के लिए रखिए। सोना एक ऐसा चीज है जो कि एक तय समय के बाद अच्छा खासा मुनाफा देता रहा है। सोने की एक प्रवृत्ति रही है क्योंकि दुनिया में सोने की आपूर्ति बहुत ही सीमित है। जितना सोना है उपलब्ध है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसमें आप समय पे बने रह सकते हैं। दूसरा, आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट नहीं था तो माफी चाहेंगे, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे।
1: प्रेम फ्रॉम दिल्ली जॉइन्स अस नाउ। प्रेम, अ वार्म वेलकम।
2: सर, आप सभी को नमस्कार।
0: सिन्हा
2: साहब
0: जी,
2: सर मेरा प्रश्न ये है कि माइक्रो लेवल पर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं गोल्ड के, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म या कोई भी बॉडी कोई ऑथोरिटी जो प्रोवाइड करे, सर किस प्रकार से आने करे?
0: देखिए, ऐसी कोई संस्था तो वैसे नहीं है जो कि बहुत ही छोटे निवेशकों के लिए जो आपकी मदद कर सके। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप उनसे सलाह लेने की बात करते हैं, तो जैसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल समय समय पर सलाह देता रहा है कि इस समय सोने के भाव में किस तरह का चलन देखने को मिल रहा है, तो उनके कमेंट्री के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा कई बुलियन एसोसिएशन है, वो भी टाइम टू टाइम उनके जो कमेंट आते रहते, उनकी कमेंट्री आते रहते, उन पे भी ध्यान दे सकते हैं आप। और बाकी रहा सवाल कि सोने को लेकर के, जैसा मैं भी कह रहा था कि दुनिया में सोने की आपूर्ति सीमित है, एक तय समय के बाद उसमें एक कहते हैं ना कि एक मुनाफे होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब ये समय कितना लग सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि डॉलर जैसे जैसे मजबूत हो रहा है सोना वैसे वैसे कमजोर हो रहा है, तो ये भी एक हैरानी की बात है कि जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है उसके बीच में भी सोना कमजोर हुआ है, जो कि आमतौर पर नहीं होता रहा है। तो इस समय में मुझे लगता है कि आप सोने में अगर निचले स्तर पर थोड़ी खरीदारी कर करके एक टाइम होराइजन अगर आपको जरूरत अभी नहीं है 5-7 साल के लिए लेकर के चले, तो मुझे लगता है कि आपके लिए वो एक बेहतर विकल्प होगा।
3: और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। लगातार 2 सप्ताह की बढ़त के बाद इस हफ्ते भारत के घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई। मध्य पूर्व में बनी अनिश्चितता और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों ने शेयर बाजार में दिलचस्पी कम दिखाई। इस सप्ताह निफ्टी 50 में 0.8% की गिरावट आई और ये 24,366 पर बंद हुआ, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 0.6% गिरकर 78,009 पर आ गया था। वही विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया गिरावट के साथ बंद हुआ। रुपया कल अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.42 रुपए पर लगभग बिना किसी बदलाव के बंद हुआ, लेकिन एक सप्ताह पहले के मुकाबले इसमें 0.2% की गिरावट आई। और इस बीच भोपाल से शंकर हमारे साथ है। शंकर, सवाल पूछिए।
4: नमस्ते मार्केट नजर टीम। सर, इंडिपेंडेंस डे की आप सबको शुभकामनाएं।
3: जी, आपको भी।
4: मेरा सवाल है कि अभी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल मिल रहा है 20%, तो उससे हमारा इम्पोर्ट पे इफेक्ट आना चाहिए था, नंबर वन। नंबर टू, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बहुत सारे बढ़ गए, बट आवर इंपोर्ट बिल इज नॉट रिड्यूसिंग। व्हाट इज द रीजन? एंड इट शुड रिफ्लेक्ट इन अवर फॉरेक्स रिजर्व। जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट इट इज नॉट गोइंग दैट वे, एंड डॉलर इज इंक्रीजिंग, रुपी इज फॉलिंग। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग? क्या वजह क्या है कि हमारा रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले? क्योंकि मार्केट ड्रिवन है मोर और लेस। एथेनॉल के प्रयोग से डोमेस्टिक सप्लाई से हमारा फ्यूल आ रहा है थोड़ा सा 20%, विच इज क्वाइट अ लॉट, बट हमारा इंपोर्ट नहीं गिर रहा, हमारा डॉलर नहीं बढ़, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर नहीं बढ़ रहा, क्या क्या कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या ये अच्छे से? थैंक यू।
0: शंकर जी, रहा सवाल कि एथेनॉल की आपूर्ति तो बढ़ी लेकिन तेल की खपत भी बढ़ी। आप गाड़ियों की संख्या देखें, हर महीने जितनी गाड़ियां बिकती हैं, अभी ताज़ा आंकड़े आए हैं, चाहे वो हम सियाम के आंकड़ों की बात करें या फाडा की आंकड़ों की बात करें, हर महीने लाखों लाख गाड़ियां बिक रही हैं। और गाड़ियों में आपने बिल्कुल सही कहा कि ई व्हीकल की भी संख्या बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है। ई व्हीकल बिक रहे हैं लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि जब खपत बढ़ी हो, जहाँ पर आप पहले एक खर्च खपत कर रहे थे, आप 1.5 खपत कर रहे हैं, 2 खपत कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा एथेनॉल है, तो उससे आपके लिए तो इंपोर्ट का बिल तो बढ़ेगा। ये भी ध्यान में रखिए कि आज रुपया जो है वो कमज़ोर है, डॉलर के भाव काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके कई देशों के साथ जो आपका भुगतान होता है वो डॉलर में होता है, तो उसका भी असर आपको देखने को मिलता है। अब रहा सवाल कि रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही खुली किताब की तरह कि बाजार की शक्तियां हैं, और बाजार में जितनी ज़्यादा डॉलर की मांग बढ़ेगी उसका असर पड़ेगा। आपने देखा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सिचुएशन जो कल रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले कल जारी किया है, वो भी $8 बिलियन के ऊपर में है। तो ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही कर रहे हैं कि हमारा रुपया इसलिए कमजोर है क्योंकि उसकी मांग है और बाजार की परिस्थितियां उनके विपरीत में है।
1: Moving on, Central Board of

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं नूपुर और समय है प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा की क्लासिक फिल्म से कुछ क्लासिक सदाबहार नगमे ऐसे। फिल्म है शोले और शबनम, आवाजें लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की, एक रोमांटिक ड्यूएट है ये, संगीत खयाम जी का है, पहुंच रहा है आप तक। इसके बाद सुनिएगा ताजमहल फिल्म में इन्हीं दो आवाजों को।

0: का निशान देख कर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज मैं हूं नूपुर और प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत की आखिरी पेशकश आप तक पहुंचाने वाली हूं। फिल्म तुमसा नहीं देखा से एक प्यारा सा तराना आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। इससे पहले जो गीत आपने सुना कश्मीर की गली फिल्म का, उसमें भी यही दो आवाजें थी। और उससे पहले फिल्म दिल तेरा दीवाना से आपने जो रोमांटिक ड्यूएट सुना उसमें आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो फिलहाल इतना ही, आइए ये गीत सुनते हैं और उसके बाद ठीक 12 बजे सुनिएगा समाचार। फिलहाल नमस्कार।

तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि पिछले 8 दशकों में देश कई बड़ी चुनौतियों से निकला है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की यात्रा अब तक की उपलब्धियों के साथ समाप्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश के कानूनी और न्यायिक संस्थानों ने भी देश के साथ उल्लेख प्रगति की है और परिपक्व हुई।

0: विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। यह भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। फिजी में भारत के उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले ने एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे की भावना को आगे बढ़ाया और दुनिया भर में भारतीय समुदाय और भारत के दोस्तों को एक साथ जोड़ा है। दूरसंचार विभाग पुणे में कल से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव है। कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। इसमें सार्वभौमिक, सार्थक, किफायती, टिकाऊ और मजबूत कनेक्टिविटी के लिए ICC इकोसिस्टम विकसित करने, विश्वसनीय और सुरक्षित डिजिटल वातावरण तथा डिजिटल कौशल और क्षमता विकास जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका में वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि गोलीबारी क्वाड एनेक्सेस इलाके में हुई। कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से मामले की जाँच की जा रही है। इंडोनेशिया में फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has announced that the government will provide free online coaching to youth from poor and middle-class families for various public examinations.
2: विभिन्न परीक्षाओं के फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: Addressing the nation from the ramparts of the Red Fort on the occasion of the 80th Independence Day, the Prime Minister also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in next 1 year. Mr. Modi said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
2: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: The Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country with their determination and dedication need every possible effort to take the country to new heights. He said a nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve. Prime Minister Narendra Modi urged all parties to support the implementation of the women's reservation in parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. Reports of Independence Day celebrations have also come from all the states and UTs. Chief ministers, governors, lieutenant governors led the celebrations of the state capitals. Special programs were also held. World leaders in foreign missions have extended Independence Day's greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and growing role in regional and global cooperation. Prime Minister Narendra Modi has thanked world leaders.

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पे लिखी कहानी। जी हाँ, कहानी। हम सबकी जिंदगी एक कहानी ही तो है। जरा अपने आसपास नजरें दौड़ाइए, हजारों कहानियां यहां वहां बिखरी मिल जाएंगी, लेकिन कोई कोई कहानी ऐसी भी होती है जो हर दिल में उतरकर अमर हो जाती है। उस जिंदगी की कहानी जो किसी के काम आ जाए, जो किसी पर कुर्बान हो जाए। वो कहानियां ही सही मायने में कहानियां होती हैं। और सच पूछो तो जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए अपने वतन की बेदी से बढ़कर पावन कोई

भारत की बात, भारत के वीर सपूतों की गाथा दोहरा रहा है भारत देश का हर जर्रा। आजकल हवाएं स्वतंत्रता दिवस की खुशबू से महक रही हैं और आज़ादी के परवानों के लहू से लाल दिखाई दे रही हैं, जो आज़ादी की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्हीं परवानों में एक वो दीवाना था जो कह गया, वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जुनून, वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जुनून, क्या लड़े तूफान से जो कश्ती ये साहिल में है सर।

1897 का दौर था। भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई कराह रही थी। भारतवासी स्वतंत्रता के खुले आसमान में सांसें लेने को तरस रहे थे। रह रह कर धीरे से देश के किसी कोने से आजादी की कोई चिंगारी फूटती थी, लेकिन उसका उजाला परतंत्रता के काले साए को पूरी तरह से मिटा पाने में सक्षम नहीं दिख रहा था।

उन्हीं दिनों 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के पिता मुरलीधर भगवान राम के भक्त थे। ये बच्चा बहुत मन्नतों और दुआओं के बाद भगवान ने प्रसाद स्वरूप उनकी झोली में डाला था। सो मुरलीधर ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा राम प्रसाद। इस नन्हे फरिश्ते के आने से मुरलीधर और उनकी पत्नी मूल रानी की जिंदगी में मानो बहार आ गई।

0: फरिश्ते।
1: बच्चे के जन्म के समय एक ज्योतिषी ने बोला, बच्चे के उंगलियों में एक चक्र का निशान है जिससे ये पता चलता है कि ये बालक अल्पायु होगा। हाँ, लेकिन अगर ये लंबे समय तक जिंदा रहा तो चक्रवर्ती सम्राट की तरह दुनिया में जाना जाएगा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनते ही माता पिता के होश उड़ गए, क्योंकि उनका पहला बच्चा भगवान को प्यारा हो चुका था और अब वो अपने इस जिगर के टुकड़े को खोना नहीं चाहते थे। जब राम की तबीयत खराब हुई तो माता पिता ने हर संभव प्रयास किया अपने लाल को बचाने की। डॉक्टर, वैद्य, कोई कसर ना छोड़ी। आखिरकार एक दिन उनकी प्रार्थना और दुआ कबूल हुई। उनका बेटा राम जब ठीक हो गया तो माता पिता की आंखों में अपने प्यारे बच्चे को लेकर नए नए सपने तैरने लगे। सभी माँ बाप की तरह वो भी यही सोचा करते थे कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।

धीरे धीरे वो बालक राम बड़ा होने लगा। बाल सुलभ क्रीड़ाएं करना, शरारतें और जिद करना, किसी के भी बागीचे से चुपके से फल तोड़ लाना, ऐसी शरारतें राम की दिनचर्या में शामिल थीं। उसका मन पढ़ने से ज्यादा खेलने में लगा रहता था। यूं लगता था कि जैसे वो थोड़े पलों में एक बड़ी जिंदगी जी लेना चाहता हो। माँ अक्सर समझाती, बेटा राम ऐसा मत किया करो, यह गलत आदत है। उस वक्त निसंदेह माँ की सीख का असर राम पर कहीं ना कहीं बहुत गहरे में उतरता ही रहा होगा। स्कूल में हिंदी की वर्णमाला में जब उसे उल्लू पढ़ाया जाता तो राम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो इसका विरोध भी किया करते थे। आखिरकार हार कर उनके पिता ने उन्हें उर्दू स्कूल में दाखिल करवा दिया।

14 साल की उम्र से ही राम चुपके चुपके उपन्यासों और गजलों की किताबें पढ़ा करते थे। शायद यहीं से उन्हें शेर व शायरी लिखने की कला मिल गई। उर्दू में मिडिल की परीक्षा में जब पास नहीं हुए तो अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कर दी और साथ ही पड़ोस के एक पुजारी से पूजा पाठ की विधि भी सीखने लगे। पुजारी एक विद्वान और सुलझे हुए इंसान थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी राम के जीवन पर पड़ा। बालक राम जब किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंचे तो उनमें अप्रत्याशित परिवर्तन हो चुका था। सारी शरारतें छूट चुकी थी और कमजोर शरीर सुंदर हो चुका था। यही वो समय था जब देश प्रेम से उस किशोर व बालक का दिल धड़कने लगा और क्रांति की लपटें उस परवाने को

मन। राम जब आठवीं कक्षा के छात्र थे तभी संयोग से आर्य समाज के विद्वान धर्मोपदेशक स्वामी सोमदेव का आर्य समाज भवन में आगमन हुआ। मुंशी इंद्रजीत ने राम को स्वामी की सेवा में नियुक्त कर दिया और यहीं से राम की जिंदगी की दिशा और दशा बदलनी शुरू हो गई। स्वामी जी राम को अनेक प्रकार के धार्मिक तथा राजनैतिक उपदेश दिया करते थे। इसके साथ ही वे राम को इससे जुड़ी पुस्तकें भी पढ़ने को देते थे। राम के कोमल मन पर स्वामी जी का गहरा प्रभाव पड़ा और अब उनका संवेदनशील हृदय भारत माता की दास्ता और देश के हालात से आहत होने लगा। उनके हृदय से देश प्रेम के गीत फूटने लगे जो हर क्रांतिकारियों की जुबान

1964 में जब लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और महान क्रांतिकारी भाई परमानंद की फांसी की सजा का समाचार छपा तो उसे पढ़कर बिस्मिल के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। प्रतिज्ञा करने के बाद बिस्मिल स्वामी सोमदेव के पास गए और उन्होंने प्रतिज्ञा के बारे में स्वामी जी को बताया और उनसे इसे पूरी करने का आशीर्वाद लिया। और फिर आखिरकार राम क्रांति की धधकती ज्वाला में कूद पड़े। अब राम प्रसाद बिस्मिल हो चुके थे और क्रांति की आग में तपकर सोना बनने लगे थे। अनेकों वीरों की कुर्बानी से उनका अंतर मन व्यथित हो रहा था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की ठान ली। सर पर कफन बांधकर वो क्रांति की ऐसी राह पर चल पड़े जहां अपने परिवार और अपनी जिंदगी से ज्यादा मायने रखता था अपना प्यारा वतन, वतन में रहने वाले इंसान और बस

करता रहा। अंग्रेजी सरकार का खुलकर विरोध करने का परिणाम ये हुआ कि बीहड़ों और जंगलों में अपने साथियों के साथ दिन गुजारने पड़े। ऊसर जमीन पर सोना पड़ा, घास फूस खाकर गुजारा करना पड़ा, लेकिन दिल से देश प्रेम की दीवानगी ना गई। इधर उधर वेश बदल कर भटकते हुए बिस्मिल कुछ दिनों तक अपनी सगी बहन के घर में भी रहे, लेकिन मजे की बात ये रही कि खुद उनकी बहन को भी उनके होने की भनक तक ना लगी। इसी दौरान उन्होंने एक छोटे से गांव रामपुर जागीर में भी शरण ली और कई महीने तक वहां के निर्जन जंगलों में घूमते हुए गाय भैंसे चराई और यहीं पर इसी हालात में रहते हुए उन्होंने क्रांतिकारी उपन्यास लिखा। इसी तरह खाना बदोशों की तरह बिस्मिल कभी इस स्थान पर रहे तो कभी उस स्थान पर, और इधर से उधर भारत माँ के उस बसंती आंचल में छिपते रहे जिसके रंग में रंग जाने की हर वीर सपूत की लाज।

चौरी चौरा कांड के बाद अचानक जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो आजादी को लेकर देश में निराशा फैल चुकी थी, जिससे आजादी के अहिंसक प्रयत्नों से बिस्मिल का मोह भंग हो चुका था। अब बिस्मिल ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ मिलकर अंग्रेजों के सशस्त्र प्रतिरोध का नया दौर शुरू किया। लेकिन अब सवाल ये था कि इस प्रतिरोध के लिए शस्त्र खरीदने को पैसे कहाँ से आए। 9 अगस्त 1925 का वो दिन था जब काकोरी नाम की जगह पर ब्रिटिश हुकूमत के खजाने को क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। जांच होने पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को सामूहिक रूप से फांसी की सजा सुना दी गई।

जेल में बिस्मिल की माँ उनसे मिलने आई। कैसा रहा होगा उस वक्त उस माँ का हृदय, जिसका लाल फांसी के तख्ते पर झूलने जा रहा था। जब वो गोरखपुर जेल पहुंची तो माँ को देखकर राम की आंखें भर आईं। उनकी माँ ने अपनी लाल की आंखों में आंसू देखकर भी धैर्य नहीं खोया। वो एक वीर माता थी। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बोली, अरे मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है, उसके नाम से अंग्रेज सरकार कांपती है। मुझे नहीं पता था कि वो मौत से इतना डरता है। अगर तुझे ऐसे रोकर ही फांसी चढ़ना था तो तूने क्रांति

राह चुनी ही क्यों। इसके बाद बिस्मिल ने अपनी आंखें पोंछ डाली और कहा, ये मौत के डर के आंसू नहीं है माँ, ये माँ का स्नेह है। तुम विश्वास करो, मैं मौत से नहीं डरता। 19 दिसंबर 1927 की वो काली सुबह जब सूरज भी खून के आंसू रो रहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी पर ले जाते समय कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़ी होकर अंतिम इच्छा में राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, और बस भारत माँ का ये लाल फांसी के फंदे पर झूल गया। 19 दिसंबर को आज भी गोरखपुर जेल में उस बलिदान स्थली पर मेला लगता है और खिचड़ी गुड़ का प्रसाद वितरित किया जाता है।

तो ये थी आज की कहानी, वो आजादी का परवाना। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868868753 पर मैसेज के जरिए बता सकते हैं। इस कहानी की प्रस्तुति, परिकल्पना और निर्देशक रश्मि कुकरेती का। और अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि पिछले 8 दशकों में देश कई बड़ी चुनौतियों से निकला है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की यात्रा अब तक की उपलब्धियों के साथ समाप्त नहीं होती। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। यह भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहे।

रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग जिले की योजना और निवेश विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और डिप्टी कमिश्नर पाक्के किसान के ऑफिस को लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री अवार्ड 2026 के लिए नामित किया गया है। ये सम्मान राज्य में सुशासन और लोक प्रशासन को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दोहराता है। अमेरिका में वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हुए गोलीबारी में कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि गोलीबारी क्वाड एनेक्सेस इलाके में हुई। कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से मामले की जाँच की जा रही है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में कल भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच इंग्लैंड से खेलेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कल हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, देशभक्ति गीत सुने, वीर शहीदों को नमन किया। भले ही दिन बदल चुका है लेकिन आज़ादी की इस खुशी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, इसलिए आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ, फिल्म का नाम आनंद मठ।

लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत. फिल्म का नाम था आनंद मठ और संगीतकार थे हेमंत कुमार, गीतकार थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ये फिल्म आई थी 1952 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हेमंत गुप्ता ने. ये फिल्म बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ पर आधारित थी. इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी पृथ्वीराज कपूर, भारत भूषण, प्रदीप कुमार, गीता बाली और अजीत कुमार ने. अगला गीत आप तक पहुंच रहा है रफी साहब की आवाज में.

फिल्म का नाम चाइना टाउन और आवाज थी रफी साहब की, संगीत रवि का और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब। चाइना टाउन फिल्म 1962 में आई थी और ये एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्माण और निर्देशन किया था शक्ति सामंत ने। इस फिल्म को लिखा था रंजन बोस ने और संगीत से सजाया था रवि ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी शमी कपूर और शकीला ने। इस फिल्म में शमी कपूर का डबल रोल था और हेलन इस फिल्म में सहायक भूमिका में थी। और इस फिल्म की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इस फिल्म का संगीत रहा था। अगला गीत मुकेश की आवाज़ में।

मुकेश की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत, फिल्म का नाम था कन्हैया, संगीत शंकर जयकिशन का। अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था संत सिंह पाछी ने और डायरेक्ट किया था ओम प्रकाश ने। इस फिल्म में एक्टिंग की थी राज कपूर, नूतन और ललिता पवार ने। इस फिल्म को संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन साहब ने और इस फिल्म का संगीत खासा लोकप्रिय रहा था और दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया था। अगला गीत रफी साहब की आवाज में, फिल्म असली नकली से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू. वक्त हुआ है 1:39 और 39 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने. अगला गीत लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज़ में.

फिल्म का नाम मुगले आजम और आवाजें थी लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की, संगीत नौशाद साहब का और गीतकार शकील बदायूनी। फिल्म मुगले आजम 1960 में आई थी और ये एक ऐतिहासिक क्लासिक फिल्मों में से एक मानी जाती है जिसका निर्माण और निर्देशन किया था कि आसिफ साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और दुर्गा खोटे ने। ये फिल्म मुगल राजकुमार सलीम और दरबारी नर्तकी अनारकली के बीच प्रेम संबंध को दिखाती है और सलीम के पिता सम्राट अकबर इस रिश्ते को अस्वीकार करते हैं, जिसके कारण पिता और पुत्र के बीच जो युद्ध होता है उस युद्ध को इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। बढ़ते हैं हम अगले गीत की तरफ। अगला गीत मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ पे।

गीत सुहाने में आज के लिए बस इतना ही। 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 88वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। ये भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रुपए के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और अमेज़न से आमजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। ऐसे दावों की आधिकारिक पुष्टि करने की अपील की है। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग जिले की योजना और निवेश विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और डिप्टी कमिश्नर पाके किसान के ऑफिस को लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री अवार्ड 2026 के लिए नामित किया गया है। ये सम्मान राज्य में सुशासन और लोक प्रशासन को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। अमेरिका में वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।

सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि गोलीबारी क्वाड एनेक्सेस इलाके में हुई। कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से मामले की जांच की जा रही है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में कल भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला इंग्लैंड से खेलेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रेम करते हुए कभी कभी मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है। कभी कभी मैंने तुम्हें मुझसे बर्ताव करते हुए देखा है। इस प्रमाण के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रेम दो व्यक्तियों को एक दूसरे के भीतर अमर कर जाता है।

0: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12:03। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और आशा जी की आवाज के साथ।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

दिल में जो है ना वो कह देना चाहिए, क्योंकि चुप रहने से अक्सर बातें अधूरी रह जाती हैं और अधूरी बातें पूरी जिंदगी हमारा पीछा करती हैं और पूरी जिंदगी हमें उन अधूरी बातों का मलाल रहता है। अगर बात दिल की हो, बात अगर प्यार की हो, तो उसे शेयर कर देना चाहिए, उसे बता देना चाहिए, क्योंकि बातें कहने से और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं और खूबसूरत भी। अगला गीत सुरेश वाडकर की आवाज़ में आप ही के लिए।

0: मुझे मालूम है आप भी मेरे साथ डांस कर रहे होंगे. आज कोई बहाना नहीं चलने वाला है ना, क्योंकि आज छुट्टी है. ये तो सिर्फ शुरुआत है, और जब शुरुआत इतनी खूबसूरत है तो अंजाम दूर तक जाएगा. क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ है. वैसे एक बात तो सच है, जब ये प्रेम का रोग है ना, ये बहुत अजीब सा होता है. इसमें ना मरीज को दवा की फिक्र होती है, ना दुआ की, बस एक दीदार की हसरत होती है कि कैसे भी करके उसका दीदार उसके महबूब से हो जाए. अगर आप भी इस वक्त किसी के ख्यालों में हैं तो ये अगला गीत आप ही के लिए.
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया. अच्छा
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया. अच्छा
1: अच्छा

वैसे गम का भी कोई फसाना होता है? होता है जनाब, जब शिकायत का अंदाज थोड़ा मीठा हो तो रूठने और मनाने का एक अलग मजा होता है।

भाई मौसम मस्ताना तो है पर रास्ता बिल्कुल भी अनजाना नहीं है, क्योंकि आप हैं मंजू के साथ और मेरे साथ जुड़ने का मतलब है दिल से दिल तक जुड़ना। मैंने तो अपनी चेयर साइड कर ली है और आप भी अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि दो डांस नंबर आ रहे हैं अभी के लिए।

तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था ना, तब मैंने ये जाना कि दो शहरों की दूरी सिर्फ हाथों को थाम लेने भर से कम हो जाती है। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:47 और 27 सेकेंड और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

सच कहूँ तो इसे कहते हैं प्यार में कन्फ्यूज़न, क्योंकि यही कन्फ्यूज़न वाला जो दौर होता है वही इश्क का सबसे खूबसूरत दौर होता है, जब हमें समझ ही नहीं आता कि हमें रिस्पॉन्स क्या करना चाहिए। प्यार ना समझी में ही होता है, क्योंकि समझदारी जब हमारे अंदर आती है तो वो प्यार की मासूमियत को हमसे छीन के ले जाती है।

रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का. रात सरमई में आज के लिए बस इतना ही. अब से थोड़ी देर में यानी कि 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. 3:10 पर आपके साथ रहेंगे.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। अजरबैजान में भारतीय दूतावास ने कल 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों और अजरबैजान के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए राजदूत अभय कुमार ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के असाधारण बलिदानों को याद किया और पिछले 8 दशकों में देश की शानदार यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे 1947 में भारी चुनौतियों का सामना करने वाले एक नए स्वतंत्र देश से भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज बनकर उभरा है। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। ये भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रुपए के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और आमजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। PIB ने नागरिकों से सतर्क रहने और ऐसे दावों की आधिकारिक पुष्टि करने की अपील की है। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा है कि एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसियों और परियोजनाओं ने ऐतिहासिक रूप से सरकारी कार्यक्रमों और जनजातीय समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया है। उन्होंने ये बात ITDA और ITDP को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ढांचा और ITDA और ITDP को मजबूत करने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस नामक 2 प्रकाशनों को जारी करते हुए कही। नीदरलैंड के एम्स्टेलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में कल भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच

इंग्लैंड से खेलेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज साहब की आवाज में यह नगमा था फिल्म कर्मा से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह बेहद खूबसूरत गीत, ऐसे गीत सुनकर आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके सहन में देशभक्ति का वो जज्बा हमेशा पैदा होता रहेगा जब तक ये दुनिया कायम रहेगी। दोस्तों, कभी कभी किसी एक झलक पूरी शाम को खूबसूरत बना देती है। कभी किसी के चेहरे का दीदार दिल में ऐसी हलचल मचा देता है कि लफ्ज भी कम पड़ जाते हैं। मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज है ना, सामने कोई हो मगर नजरें झुक जाएं, कुछ कहने को दिल बेताब हो मगर लब खामोश रहें, और बस एक दीदार की तमन्ना दिल में रह जाए। आज के इस हसीन सफर पर आइए हम और आप मिलकर चलते हैं, हमराही के इस बहुत ही खूबसूरत सफर पर एक बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की। इन आवाजों में वो नटखट सी फरमाइश जिसमें प्यार भी है, शरारत भी और इंतजार भी, क्योंकि ये नगमा है ऐसा ही नगमा जो वक्त की नजाकत को जानता है, पहचानता है। जब पर्दे के पीछे छुपे चेहरे को देखने की बेकरारी मोहब्बत की खामोशी और मोहब्बत को और भी हसीन बना देने वाला ये बेहद खूबसूरत गीत जब आप सुनते हैं तो सीधे दिल पर दस्तक देती हुई आवाज बहुत दूर आपको लेकर जाती है मोहब्बत की उस गहराई की तरफ।

जिसमें है वफा का वादा अपनापन और दो दिलों का वो इजहार जिसमें कोई शिकवा नहीं कोई शिकायत नहीं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। तो अपनी आंखों को बंद कीजिए किसी खास शख्स को याद कीजिए और महसूस कीजिए उस रिश्ते की गर्माहट जहां दिल कहता है हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

गोरी बोल तेरा कौन पिया। बेहद खूबसूरत ये नगमा फिल्म मिलन से लता जी और मुकेश की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मोहब्बत हमेशा गंभीर नहीं होती, कभी कभी इसमें थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी मुस्कान और बहुत सारा खूबसूरत एहसास भी होता है। किसी को पहली बार देखकर दिल का यूं धड़कना, उसकी एक मुस्कान पर अपना दिन खुशनुमा बना लेना और रात को अंधेरे में सितारों को तकते हुए रहना और उसको महसूस करना और फिर बिना कुछ कहे बस उसे देखते रहना ख्यालों में, यही तो है वो मासूम सा इश्क जो दिल को बहुत कुछ कह जाता है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी शख्सियत है, कोई ऐसा शख्स है जिसकी मुस्कान आपका दिल चुरा ले, जिसकी जुल्फे देखकर नजरें ठहर जाती हैं उन पर और जिसके सामने आते ही दिल कुछ कहने को बेताब हो जाता है, तो यकीन मानिए ये नगमा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कितनी अजीब सी बात है ना, कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस कुछ पल के लिए आते हैं लेकिन उन पलों की याद बरसों तक हमारे साथ रह जाती हैं।

एक मुस्कान, एक नजर, एक मुलाकात और दिल में बस जाती है एक छोटी सी दास्तान। शायद इसी को कहते हैं बिना कहे किसी को अपना बना लेना, अपना मान लेना या अपना हो जाना। तो उस खास शख्स को याद कीजिए और इस सदाबहार नगमे के साथ अपने इस सफर को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ। फिल्म तीसरी मंजिल का ये बेहद खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही में

0: योगेश साहब और लता जी की इन्हीं आवाजों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए हमराही से इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद ठीक 4:10 पर हम रहेंगे लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आदाब।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया।

0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। अजरबैजान में भारतीय दूतावास ने कल 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों और अजरबैजान के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए राजदूत अभय कुमार ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के असाधारण बलिदानों को याद किया और पिछले 8 दशकों में देश की शानदार यात्रा पर चर्चा की। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रुपए के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और आमजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वो चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई एकेडमिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 22वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वो चेन्नई में नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA आज UGC नेट जून 2026, CSIR नेट, ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन और PhD प्रोग्राम के लिए ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी। एक्सपर्ट एक सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने कहा कि प्रोविजनल आंसर की उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। और इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehbash Fatima. The nation celebrated its 80th Independence Day yesterday. On the occasion, Prime Minister

परेशानी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलोस आदाब और आज के इस सफर का आगाज करेंगे एक ऐसे बेहद खूबसूरत देशभक्ति गीत के साथ जो हम सब के नस नस में भरा है वो देशभक्ति का जज्बा वो देश के लिए कर गुजरने का मर मिटने का जज्बा जो हम तमाम हिंदुस्तानियों के दिल में है और वो इसलिए इस वक्त क्योंकि मौसम भी है वक्त भी है और दस्तूर भी हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं कल हमने ये मनाया है और ये तकरीबन पूरे हफ्ते तक यूं ही देशभक्ति के जज्बे के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे अपनी सांसें जब तक चल रही है तब तक ये जज्बा हमारे खून में यूं ही गर्दिश करता रहेगा कहते हैं वतन ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता वतन वो मिट्टी है जिसमें हमारी यादें हैं वो हवा है जिसमें हमारी सांसें हैं और वो तिरंगा है जिसमें करोड़ों दिलों की उम्मीदें बसती हैं हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं क्योंकि कोई जवान सरहद पर जाग रहा होता है हम अपने सपने पूरे कर पाते हैं क्योंकि किसी ने अपने सपनों से पहले वतन को चुना है उसके लिए फर्ज सबसे पहले है और देश सबसे ऊपर अगर हम अपने काम को ईमानदारी से करें एक दूसरे के साथ साथ देकर करें अपने देश की इज्जत करें और हर दिन भारत को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें तो हमारा देश हमारा मुल्क हमारा वतन एक चमकता हुआ सितारा की तरह पूरी दुनिया में रोशन होगा सरहद पर खड़ा जवान हो खेत में मेहनत करता किसान हो कक्षा में बच्चों को पढ़ाता शिक्षक हो या अपने काम से देश को आगे बढ़ाता हर नागरिक हर इंसान इस वतन की ताकत हम हैं इस देश की ताकत हम हैं इस मुल्क की ताकत हम सभी हैं आइए इसी जज्बे के साथ आज के इस सफर का आगाज करते हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर

जी हाँ, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है। हम अच्छा करेंगे तो हमारे देश का नाम रोशन होगा, हम अच्छा करेंगे तो हमारा मुल्क सितारों की तरह आसमान में चमकेगा, पूरी दुनिया में चमकेगा। इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि हमारा ये देश, हमारा ये मुल्क, हमारा ये वतन यूं ही हमेशा तरक्की करता रहे। अरुणिमा की इस महफिल को अब आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं अपने इस सफर की तरफ। दोस्तों, जिंदगी भी एक बाग की तरह है, कभी यहाँ फूल खिलते हैं, कभी मौसम बदल जाता है और कभी कोई खुशबूदार याद हमेशा के लिए दिल में बस जाती है। हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजार में रहते हैं, लेकिन जिंदगी की असली खूबसूरती तो उन छोटे छोटे पलों में छुपी होती है, एक मुस्कान में, किसी अपने की आवाज में, बारिश की पहली बूंद में, या फिर किसी पुराने गीत के धुन में। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में, फिल्म शर्मीली से। इन लफ्जों में सिर्फ फूलों की बात नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में हर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे हम सब की जिंदगी में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बिल्कुल वैसे ही ये हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन उसका डटकर मुकाबला करना ज़रूरी है। आज अगर कोई परेशानी है तो कल सुकून भी आएगा, आज अगर आंखों में आंसू है तो कल चेहरे पर मुस्कान भी होगी। कभी किसी पुराने गीत को सुनकर अचानक कोई पुरानी याद लौट आती है, कोई चेहरा याद आ जाता है, कोई अधूरी सी दास्तान फिर दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है, तो फिर समझें कि हमारा वक्त बदल रहा है। शायद यही संगीत की खासियत भी है, ये बीते हुए कल को आज के पल में फिर से जिंदा कर देती है। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई फूल जरूर खिलता है, बस उसे देखने के लिए दिल में थोड़ी सी उम्मीद और आंखों में थोड़ा सा ख्वाब होना बेहद जरूरी है।

खिलते हैं गुलियां मिलके बिछड़ने को। बेहद खूबसूरत ये नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में शर्मिली फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, मोहब्बत में सबसे खूबसूरत एहसास क्या है? शायद वो सुकून जो किसी खास इंसान के पास होने से मिलता है। कभी कोई शख्स हमारी जिंदगी में यूं आता है कि उसकी एक मुस्कान दिन बना देती है, उसकी आवाज दिल को सुकून देती है और उसकी मौजूदगी हर फिक्र को दूर कर देती है। फिल्म मेरे जीवन साथी का एक बेहद खूबसूरत नगमा किशोर कुमार साहब की आवाज में ये सदाबहार नगमा भी ऐसे ही प्यार की दास्तान है, जहां दिल अपने हम सफर से बस इतना कहना चाहता है कि तुम हो तो सब कुछ है। ये सिर्फ एक पुकार नहीं, एक दिल की बात नहीं, बल्कि उस रिश्ते का एहसास है जहां प्यार में कोई दिखावा नहीं, सिर्फ अपनापन और वफा है। तो आइए इस गीत को उस शख्स के नाम कीजिए जिसके बिना आपकी शाम, आपका दिन, आपकी रातें अधूरी हो और जिसके साथ हर पल खूबसूरत लगने लगे। इसी नगमे के साथ आगे बढ़ते हैं और अरुणिमा के सफर को

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है अरुणिमा के इस दिलकश महफिल में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:36 और 10 सेकंड और महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। परवीन शाकिर कहती हैं पूरा दुख और आधा चांद, हिजर की शब और ऐसा चांद, अच्छे घने बादल के पीछे कितना तन्हा होगा चांद। कभी कभी जिंदगी में कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल के किसी कोने में एक खामोशी छुपी रहती है। शायद यही है पूरा दुख और आधा चांद। एक ऐसा एहसास जहां आसमान में चांद तो पूरा नहीं मगर रात की तन्हाई पूरी होती है। हम अपनी परेशानियां अक्सर दुनिया से छुपा लेते हैं लेकिन रात की खामोशी में वही दर्द फिर लौट आता है। कोई पुरानी याद, कोई अधूरी दास्तान, कोई अपना जो अब साथ नहीं, दिल को फिर से उदास कर जाता है। मगर याद रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हर दर्द हमेशा नहीं रहता और कभी कभी अधूरा चांद भी हमें उम्मीद देता है कि अगली रात शायद कुछ और मुकम्मल होगी। इसी एहसास, इसी उम्मीद के साथ हम भी अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और अरुणिमा के भी इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की आवाज में ये बेहद खूबसूरत कलाम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

रेशोनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल है। स्वागत है अरुणिमा के इस बेहद खूबसूरत महफिल में। दोस्तों, जिंदगी एक रास्ता है, कभी आसान कभी मुश्किल, कभी मंजिल पास दिखाई देती है तो कभी रास्ते में इतनी रुकावटें आती हैं कि लगता है शायद अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। लेकिन याद रखें और यकीन भी रखें, जीत उन्हीं की होती है जो चलते चलते बस बढ़ते जाते हैं, और मंजिल उन्हीं को मिलती है जो धीरे ही सही कदम बढ़ाते रहते हैं। हारना बुरा नहीं है, हार के बाद रुक जाना बुरा है। एक कोशिश नाकाम हुई तो दूसरी कीजिए, गिरे संभले और फिर आगे बढ़े, क्योंकि हिम्मत वो ताकत है जो मुश्किल वक्त में भी दिल को उम्मीद देती है। किशोर कुमार साहब, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज साहब की आवाजों में एक ऐसा ही गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं जो ये पैगाम देता है कि मेहनत और हौसले से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। तो अगर आज रास्ता कठिन है, घबराइए मत, वो आसान भी होगा। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, बस चलते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने ख्वाबों पर यकीन रखिए, क्योंकि भाग्य रास्ता नहीं बनाता, आपके कदम रास्ते बनाते हैं और भाग्य आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:55 और 2 सेकेंड। महफिल है अरुणिमा की। कहते हैं कभी कभी किसी की आंखों में ऐसा क्या दिख जाता है कि दिल अचानक खामोश हो जाता है, ना कोई बात ना कोई वादा, बस एक नजर, और दिल को लगता है जैसे सामने वाला बहुत कुछ कह गया हो। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, ये हमेशा लफ्जों की मोहताज नहीं होती, कभी एक मुस्कान, कभी एक नजर और कभी आंखों की खामोशी ही दिल का इजहार बन जाती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा किशोर कुमार साहब और लता जी की आवाज में आपके लिए है।

किशोर कुमार और लता जी की इन आवाजों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए अरुणिमा से इजाजत। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा ठीक 5:10 पर लेकर भोर सुहानी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा

0: में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का भी आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रुपए के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और अमेज़न से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसे किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई एकेडमिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 22वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट जून 2026, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अंतिम उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। एजेंसी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो केवल एजेंसी की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। ये सुविधा पहले कल खत्म होनी थी और आज से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होना था। अधिक महिलाओं को स्मार्ट कार्ड बनवाने का मौका देने के लिए सरकार ने कागजी टिकट की अवधि बढ़ाई है। पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे बढ़ाएगा। कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त पड्डीकल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। केएल राहुल 77 रन पर रिटायर हुए थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। अजरबैजान में भारतीय दूतावास ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों और अजरबैजान के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मिनट और 5 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका अपना अजीज दोस्त फिरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं इस भोर सुहानी के सफर का आगाज करते हैं एक ऐसे देशभक्ति वाले गीत के साथ जिसके लिए हम सब अपने देश के लिए हमेशा कुर्बान होने के लिए तैयार हैं और वतन की राह में वतन का हर नौजवान शहीद होने को तैयार है और शायद यही वो जज्बा था जिसने हमें आज़ादी दिलाई 15 अगस्त 1947 को हमारे उन अमर सपूतों को उन बलिदानियों को नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे जो जिसकी वजह से जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इस देश को आज़ाद कराया उनको नमन करते हुए उनको याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम भी यही प्रण लेते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत होगी वतन की राह में हमने अपने आप को न्यौछावर कर देंगे वतन की राह में हम अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे बिल्कुल शहीद फिल्म के इस नगमे की तरह

मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये नगमा था फिल्म शहीद से, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। और यही वो नगमा है जो हम सब में वो जज्बा पैदा करता है कि वतन की राह में हमें हमेशा तैयार रहना है, कुर्बान होने के लिए, अपने वतन के लिए सब कुछ करने के लिए, अपने वतन के हिफाजत के लिए, अपने वतन को रोशन करने के लिए, दुनिया में उसका नाम आगे बढ़ाने के लिए हम हर वक्त तैयार रहें। इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं, यानी भोर सुहानी के सफर को आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी में हम एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, एक नए जज्बे के साथ आज इस सफर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने आगाज किया है देशभक्ति के उस गीत के साथ जो हमें प्रेरणा देता है कि हमें सब कुछ अपने वतन, अपने देश, अपने मुल्क के लिए करना है। लेकिन ये धरती, ये आसमां, ये जमीन, सब कुछ उस ईश्वर का दिया हुआ, उस खुदा का दिया हुआ है जिसने इस दुनिया को बनाया और जिस पर हम सबको यकीन भी है। और इसी उम्मीद के साथ हम हर दिन का आगाज उसी ईश्वर, उसी खुदा के नाम से करते हैं जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें सरजमीन पर भेजा और इंसान को सबसे बेहतर बनाया। तो आइए हम भी उसी की याद कर, उनको ही याद करते हुए, उस ईश्वर को, उस खुदा को याद करते हुए आज के इस सफर का और इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं, यानी भोर सुहानी के सफर को और आगे बढ़ाते हैं जिसने हमें इस धरती पर भेजा, जिसका दिया हुआ ये सब कुछ है, ये जमीन, ये आसमान, इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब उसी का दिया हुआ है। इसी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।